अजूनी सहगन गुर प्रसाद तक जदो गुर प्रसाद तक जदो आवाज आई ता गुरु नानक सच्चे पातशाह दी समाद लग गई। आवाज आई ऐ नानक की कर रहे हैं ता गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे निरंकार जो उपदेश आपने मेनू दिता है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच से जुगाद विच भी सच से हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। ए उपदेश लेता इत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेई नदी विचों बाहर ना निकले मर्दाना डरिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए। बाला भजिया बेबे नानकी दे कोल आया कहन लगा बेबे पाया जी

गुरु नानक वेही नदी विच नहाउण वास्ते गया ते उधर कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। ते भाई जय राम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेही विच डूब गई। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी भरोसे वाली सी कहन लगी इवे ना आखो मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेही विचों निकले इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेही विच डूब गया लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है ओह कदे डूब नहीं सकदा। तां ही सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया आवाज आई बेबे करतार चित आवे उठी बजी बेबे नानकी मेरा वीर आ गया। जां बुआ खोलिया गुरु

फिर संसार विच हुण जगत जिया नू तारन वास्ते निकल पए। जिथे किथे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह गए, जे सज्जन ठग कोल गए तां सज्जन ठग नू ठग तो संत सज्जन बना दिता, जे भूमिए चोर कोल गए ते भूमिए चोर नू साध बना दिता साधु बना दिता, जे गुरु नानक दी नदर कोड़े रिठे ते पई तां ओ रिठा कोड़ा ना रिया मिठा हो गया, जे गुरु नानक दी नदर कोड़े राक्षस ते पई ते ओ राक्षसी बुद्धि छड़ गया, क्योंकि गुरु नानक

मेरे मालिक रहमत कर ते मैनू उन्हां दे चरणां दी धूड़ प्राप्त होवे जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निम निम लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन ते मिलाए जी तू जिथे मिलिया मेनू भी मिला जिथे तेरी सांझ बनी उथे मेरी भी सांझ बना दी मैं अपने मन की अवस्था उन्हां कोल आखा जेड़े तुरे हुए ने पहुंचे हुए ने इस मार्ग ते जिन्हां ने चार कदम तय किए हुए मंजिला मारदे तुरे जा रहे ने जेड़े ओ जेड़े मंजिला मारदे जा रहे ने साहब कहंदे ने अखाउंदे ही नहीं केवल तो की करदे ने उद्दम करे भलके प्रभाती अमृत वेले प्रभात का मतलब है सूरज चढ़न तो बहुत पहला डान ते मारने च फर्क है जिसने सूरज चढ़दा है उसनु डान कह देने लेकिन सवेरा इस तो पहला सवेरा का मतलब होंदा है चंगा वेला सवेला सूरज चढ़न तो बाद जेड़ा बंदा भगती की गल सोचता है ना वह कवेला कर बैंदा सवेरा जिन्हां ने सामना है वह अमृत वेले सूरज चढ़न तो बहुत पहला पहला अपना काम नबेड़ दे ते जेड़े इस मार्ग से तुरे हुए ना भाई साहब तो बड़ी खूबसूरत गल कही भाई साहब कहंदे ने ऐसे लोग जेड़े गुरु मार्ग से अमृत वेले तुरदे ने मेरा तो जी करता है उन्हां दे चरणां दी खाक हो जा नख सिख लो नख पैरां दा नहु नख सिख सिर दी चोटी नख सिख लो सगल अंग रोम रोम कर काट काट सिखण के चरण पैवाई कट कट के मेरा शरीर सिखां दे चरणां तो निछावर कर दे वारने कर दे कहंदे ने अग्न जलाए हुण पीसन पिसाए तेह चक्की च पी दियो अग च भुन दियो लै उड़े पौन होए अनेक प्रकारिये तरह तरह नाल हवा विच उड़ा दियो सी हवा विच मेरे शरीर दी खाक उड़ जावे जिथे कहंदे ने जत कत सिख पग धरे गुर पंथ प्रात सवेरे सवेरे जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिख गुरु चरणा वाल तुर के आउंदे ने जेड़े जेड़े रस्तियां तो गुरु के सिखां दे चरण गुरु के सिखां दे पैर गुरु चरणा वाल गुरु द्वारे वाल वधदे ने ताहू ताहू मार्ग मैं पसम को डारीए मेरे शरीर की पसम जेड़ी उन्हां उन्हां रस्तियां ते फैला दे उन्हां उन्हां रस्तियां ते विछा दिओ मेरे शरीर नूं सुआह करके पसम करके देह पद पादक चरण लिव लागी रहे उन्हां रस्तियां ते पैदल चलण वालियां दे चरणां नाल मेरा प्यार बनिया रहे मेरी लिव लगी रहे दया के दयाल मोहे पतत उधारिए ताकि उन्हां दे चरणां दी खाक प्राप्त करके मेरे शरीर दी खाक उन्हां दे चरणां दी छोह प्राप्त करके मैं पापी पार उतर जा मेरा पापी दा उधार हो जा कैसी प्यारी जीवन जाच है उत्तम करे पलके प्रभाती अमृत वेले उठे उत्तम करे आलसी ना रह जावे क्योंकि आलसी दा निरा रोगी किसे पासे भी कामयाब नहीं हो सकता गुरसिख जीवन दे हर मैदान विच सफलता नूं प्राप्त करने वास्ते उद्यम करदा और महाराज दे पावन बाणी च सुचेत कराया उद्यम करेंदिया जीओ तू कमांदिया सुख पुंज ध्यानदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत उद्यम करके जी उद्यम करके कमाई भी कर ते ध्यान करके भगती करके प्रभु दे नाल सांझ भी भर पा लै इधर भी मिलाप कर लै इस तरह तेरा जीवन एक चैन वाला सुख वाला निश्चिंती वाला हो जाए इशनान करे अमृत सर नावे शरीर करके भी शुद्ध ते जिथे बाणी दा अमृत वसदा हो उस सत्संगत दे अमृत सरोवर में आके मन नूं भी डुबिया लवा उपदेश गुरु हर हर जप जापे गुरु का उपदेश सरवण करे उसके अनुसार ही उतरगे वाहेगुरु नाम सिमरन करे उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम अमृत छकने ना पंजा प्यारिया वो जिसले कहिंदे ने गुरसिखा आज तो तेरा जन्म गुरु नानक दे घर विच होया कलगीधर पातशाह दे घर च होया तेरा पिता गुरु कलगीधर तेरी माता साहिब कौर तेरा जन्म केसगढ़ साहिब दा ते वासी तू आनंदपुर साहिब दा रही चल भावे जिथे तेरा दिल करदा किस नगर च रहो तेरी सांझ आनंदपुर वाले नाल बनी हो बल्कि तेरा हिरदा उस आनंद दे
नगर दा वासी होवे जिसनू किया गया बेगम पुरा शहर को नाओ तू खांदो नहीं ते ठाओ तेरी मानसिक अवस्था आनंद वाली हो तू उस आनंद वाली नगरी का भी वासी होवे जिथे भगतां दा वासा हुंदा संतां दा वासा हो उस आत्मक अवस्था की उच्चता तू प्राप्त हो उथे नाले भी कहंदे गुरमुख तेरे ते आज तो ए पाबंदी आयद होगी ये गल समझ लेना जेड़ा बंदा पाबंदियां अंदर नहीं जींदा वो आप उतरा डिसिप्लिन नू ना धारण करना घरां दा डिसिप्लिन है स्कूलां कालजां दा डिसिप्लिन है फौजां दा डिसिप्लिन है बाजारां कारोबारां दा भी अपनी किस्म दा एक डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन तो बाहर जाओ कानून आग्या नहीं देता धर्म दे संबंध च ऐसा लोगों ने समझ लिया जो मर्जी करो ऐसी गल नहीं चले गुर सतगुर का जो सिख आखाए वह सिखी दे डिसिप्लिन च चले गुरसिखी दे जो नेम ने और वह नेम तुहानू पता है सारियां नू पता है पंज प्यारे हुक्म देणगे अज तो तू पंजां ककारां दा रहता नहीं होना इन्हां पंजां ककारां दी हद तो बाहर नहीं जाना इस डिसिप्लिन तो बाहर नहीं जाना और चार बजर कुरहतां दी उस लकीर तो भी बाहर नहीं जाना चार बजर कुरहतां तो बच के रहना है पंजे रहतां नू पूरी तरह धारण करना ना केवल बल्कि ईमानदारी नाल धर्म की किरत करके कमाना है गुरु दसवंध देना है परोपकार हित जूझते रहना है अपने अंदरों उठते विकारां नाल जूझते रहना है वो जिहड़ी तुक आपां पढ़ने रहत नाम है खालसा सोए जो चढ़े तुरंग खालसा सोए करे नित जंग बंदा सोचता है भी ओ दा समां सी जिसले घोड़िया ते चढ़ के गुरु के सिख जंग करते सन ते महाराज ने लिखाए हुए रहत नामे तां त्रैकाल ने हुण जे घोड़े नहीं ते जंग नहीं ते फिर दा मतलब है सिख की करे जे नहीं करदा घोड़े ते नहीं चढ़दा जंग नहीं करदा ते फिर सिख तां बेकार हो गया सिख सिख ना रहा ऐसी गल नहीं है ओ जंग बाहर नहीं है बुराई नाल जंग है लेकिन बुराई तां अंदर भी चलदी पई जिसले बंदा इधरों बाहरों वेला होवे साहिब कलगीधर पातशाह कोल सिखा ने सवाल किया महाराज हुण तां कोई लड़ाई झगड़ा जंग कोई नहीं रह गया की करिए अजकल की करिया करिए साहब कह लगे युद्ध जारी रखो हैरान हो गए कह लगे महाराज हुण आपस च लड़िए युद्ध किहदे नाल जारी रखिए लड़न वाला दुश्मन ही कोई नहीं सारे भगौड़े हो गए छड गए भज गए हुण किहदे नाल लड़िए युद्ध जारी रखिए कैसा युद्ध वैसे महाराज ने यह भी रोजाना के नितनेम शामिल किया रेजाबाजियां करो तलवारबाजियां करो शरीर की कसरत भी करो शस्त्र धारनी होके शस्त्र भी विद्या प्रवीण होने का जतन भी जारी रखो लेकिन इथे जिसने महाराज ने कहा युद्ध जारी रखो महाराज कि लड़िए धन जियो तेह को जग मैं मुख ते हर चित मैं युद्ध विचारे बारला युद्ध भी चित का युद्ध भी वह कि युद्ध है महाराज कह लगे अंदर तुहाडे ते थोड़ियां धारा पैंदियां ने कदे काम हमला करता है कदे क्रोध कदे लोभ मोह हंकार इन्हां नाल अंदरों ज्ञान है की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार मुहारे ज्ञान दा शस्त्र लैके अंदर दी बुराई नूं वढ़दे चले जाओ अंदर दी भी सफाई जारी रखो युद्ध अंदर भी चल सकदा खालसा सोए जो चढ़े तुरंग जो मन दे घोड़े ते सवारी करे मन नूं काबू च रखे डिसिप्लिन च रखे सिक्खी दे डिसिप्लिन च रखे मन नूं शरीर दा डिसिप्लिन है कि रहता दा धारी हो रहता तो बचिया हो मन का डिसिप्लिन यह है कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे काबू ना इस घोड़े नूं लगाम पा के बाणी अनुसार खालसा सोए करे नित जंग बुराइयां नाल अंदर भी बुराइयां नाल जंग करे बाहर भी जंग करे साहब कहंदे ने ऐसा गुरु का सिख उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दोख लह जावे जिसने गुरु के बचना अनुसार एक डिसिप्लिन च जीवन बतीत करेगा ना पाप धोते जाने दोष खत्म हो जाने दोख कहंदे ने दोष नूं दोष खत्म हो जाने जीवन चो बुराइयां निकल जाने जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर स्वास अंदर आवे स्वास बाहर जावे ए वाहगुरु सिमरन जुड़िया हो आम तौर ते ऐसा भी करते ने स्वास अंदर जावे ते वाह कहते स्वास बाहर जावे ते गुरु कहते सहज अवस्था विच इस तरह जपते फिरते चले जाते ने कई कदम कदम जपते ने कई कारोबार करदिया हो कोई भी हरकत कोई ताल मिल जाए उस दे नाल वाहगुरु सिमरन का यतन करते ने लेकिन कई बार ऐसा भी होंदा है सहज अवस्था विच सिमरन करदिया करदिया मन की स्थिरता प्राप्त नहीं होंदी मन टिकदा नहीं उहदे वास्ते कई बार मन नाल जूझना भी पैंदा उहदे विच ऐसा भी किया गया गुरमुख गुरसिख जोर ला के भी सिमरन करते ने साह की चाल तेज कर देते
ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਹੇ, ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਣ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਸਦਕਾਮ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦੇਵੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਵੇ, ਦੁਰਮਤ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਲਵੇ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਦਿਨ ਹੋਮੇ ਕੁਬਦਾ ਪੰਨੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾਹੀ, ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਠਾ ਹਰ ਜਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਨੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਲ ਚੜੀ, ਚਵੰਗਣ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਦੇ। ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜੈ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸੇ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਹੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚ

तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु नानक जप जा।

कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार किया, कत हूँ अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी नहीं। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए? ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, ये तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कऊ जछ गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होए के पुराण को पढ़त मत कतहूं।

देत हो कहूं देवतान के दीवान में विराजमान कहूं दानवान को गुमान मत देत हो कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो कत

তাহাই। पावक में अर पवन हूँ मैं, पृथ्वी तल में सुकहा न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही।

मैं बंदा बेखरीद सखा मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है वो मेरा, जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जल को प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे।

अपनी कृपा करें। कमल नानक आरा दे किस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

सुप्रजे मदिन होत साधु तुरे आवर जानु रेखित पाई जल मरन के मिटे वसूरे गुरनारायण दाई गुरु गुर सच्चा सिद्धिन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर गुण

अरभलोक सियाने, तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारित बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सबे, मुन इंद्र महाशिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ता का दरबारा।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बो तायो। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे, असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए, ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साद सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। उस गुरु नानक दे गुण जदो राजे जनक दा दरबार लग्या सी, और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री, ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हैं, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इना जीयां ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इना ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इना ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती, तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासा नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहेगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाईयां, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलदा। साडे सारिया दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जदों कदे ऐसा महसूस होवेगा कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदो रोमा विचो अमृत चढ़दा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासा विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुनदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां साहिबंत कहिंदे ने ना जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन होता रहे, एक भी हो सकता। वो एक अवस्था है, कोई उसनू अनहद नाद की गल करता है, कोई उसनू इलाही नाद की गल कह के करता है, कोई किसी ढंग नाल दसता है। लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहेगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद की अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजदा है। हर वक्त भी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते नाना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इह बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा वगार जापदा, बोझ जापदा। शुरू शुरू में सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं बेनती करा बच्चे नु स्कूल तोरने पहला आड़ी भी करदा। कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चे वल वेख के इन्हां दा लिबास बड़ा वधिया, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने। कईआं बच्चिआं दे अंदर इह शौक पैदा करता जांदा है, पढ़ेगा बहुत वड्डा अफसर बनेगा, बड़ियां तरक्कियां करेगा, वह चा लै के तुरदा। नहीं तो आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिआ बहुते तां रोंदे भी वेखेगा, ओनू एक बार धक्के स्कूल पहुंचा पैदा, उथे जाके बहिंदा, एक ता जकड़ के बहना बड़ा होता, एक जो कुछ पढ़ाते ने ओदी समझ तो बहरा होता है, वह पहला पहला बड़े परेशान होता है। पहला पहला उसनू उड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अखर है बोझ जापते। लेकिन चार दिन बाद जरा बोझ है वह ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अखर मौज बन जाते। उन्होंने अखर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ना लवे ओदी मन की शांति नहीं बढ़ती। यह संसारी पद्धत की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापदा, नितनेम भी बोझ जापदा, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जेडे कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जि अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाए, वासियां मारते ने, पासे मारते ने, किहड़े वेले भुख पवे जान छुट्टे, फसे जापते। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह बेनती की स्कूल जाने वाले बच्चे कई ऐसे भी होंगे ने, फरियाबद्दी पंद्रह पंद्रह तीह बरे बोझ ही धोते ने, पढ़ते भी किताबा मत्था मारते भी, रोंदे हुए दुखी होंगे हुए, कई बार वह फेल हो जाते, धू धू के अपने आप नूं शर्मो कुशर्मी दूसरे नाल तोरते ने, चा पैदा नहीं होंगे, शौक नाल नहीं पढ़ते। तो फिर उनके माता पिता उन्हें आला दुआला कहते पढ़ता तो है, पढ़ता कदा बगार कटता, तू कसीट के तुरैया आंदा, वैसे पढ़ने वाली गल कोई। बिल्कुल इसे तरह साडी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋਖ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਫੜਨਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਾ ਤੇ, ਜੀਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ